0: रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज।
1: होइन के आउँछ रे, कुन रेडियोमा आउने हो?